0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा ले, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: तू लव करती है ना मेरे से? बस लव है तो सब है।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तो लोगों में नहीं बंटते, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Slow, gradual, relaxed, a bit romantic. That's how we like our days to start.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Question for you. Do you think about anything apart from work on your way to work? मतलब जब आप drive कर रहे होते हैं, क्या आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ काम ही काम छाया रहता है? और do you actually actively search for something which is like a distraction? कि यार वैसे भी काम पे पहुंच के सिर्फ काम की बातें ही सुननी है, कहनी है, करनी है, boss की डांट डपट. तो I'm going to like, have you found a way to completely compartmentalize, you know, things? कि I'm not going to think about work on the way to work. थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया. इफ यू गॉट अ ओपिनियन अबाउट दिस, देन गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. आई एम गोना प्ले आउट वन ऑफ माय फेवरेट स्लो सॉन्ग्स. स्लो तो नहीं कह सकते, बट लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स, फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द रीसेंट पास्ट. मेट्रो इन दिनों जब भी इनका कॉम्बिनेशन आता है प्रीतम अरिजीत सिंह का, कुछ कमाल ही होता है. एंड दिस इज नो डिफरेंट. सॉन्ग्स कॉल्ड जमाना लगे, वंडरफुल लिरिक्स, वंडरफुल सॉन्ग. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. This summer, get ready for a big surprise that will make the heat worth it. Big Summer.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: देखो देखो वहाँ क्या?
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Insurance Market.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
2: It's game on with Big Ticket.
3: A guaranteed 25 million dirham prize.
2: 5 winners of 1 million dirhams each.
3: Plus weekly draws.
2: Buy now at BigTicket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
11: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
12: अब फिर 14 मिनट इज 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. सनी स्टार्ट दिस थर्सडे मॉर्निंग. ह्यूमिडिटी एट 61%. विंड्स ब्लोइंग एट जस्ट 8 किलोमीटर पर आवर. हाइज ऑफ 38, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस.
11: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: वाओ, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
3: थ्री हार्ट्स, वन फ्रेंडशिप, वन अनफॉरगेटेबल जर्नी। मैडॉक फिल्म्स एंड लव फिल्म्स प्रेजेंट कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिब कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदना, डायरेक्टेड बाय होमी अदजानिया, रिलीजिंग ऑन जून 19th ऑल अक्रॉस द GCC इन अ सिनेमा नियर यू, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मारुधर, पावर्ड बाय बिग 106.2।
4: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, बिकॉज राइट नाउ द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल इन द UAE इज हियर for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: InsuranceMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: यूज करने पर पाइए कोचैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए कोचैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: It's 7:51 on the clock, and now it's time for some positive news from the workspace.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Yeah, because when you think about the workplace, workspace, then you know the first thought that comes. Why is it like this? Like the first thought is always a negative one. Yeah, you get a bit defensive. अरे यार अब ये काम की बातें करेगा, वैसे ही हम काम पे जा रहे हैं, क्यों? लेकिन नहीं, मेरा काम है आपको वाकिफ कराना with some really good bosses in the world. ऐसा नहीं है कि all bosses, all managers in this world are like Yaku Kruur Singh. IYKYK, if you know that reference, then give me a call. Yaku Kruur Singh, kaun si TV show ka character tha, 800-1062 par. But opposite of Yaku Kruur Singh is this guy, a boss, a startup founder. He's revealed recently that he spent around 3 lakh Indian rupees, so around 12,000 dirham per employee. क्या करने के लिए? बेनिफिट्स? नहीं नहीं नहीं, वेकेशंस? नहीं नहीं नहीं, लीव्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ही स्पेंट ऑल ऑफ दिस मनी पर एम्प्लॉय ऑन गद्दे, मैट्रेसेस. क्या बात है, क्या बात है. हर चीज की शुरुआत एक सोच से होती है, उसकी सोच आप डिसाइड कीजिए कि सोच में मोचे कि नहीं. बट ही बिलीव्स दैट प्रीमियम मैट्रेसेस, यू नो, गद्दे जो हैं, दैट डिसाइड्स वेदर यू नो एन एम्प्लॉय is productive or not productive. That decides how productive the employee is, because he believes that better sleep leads to higher productivity and improved well-being. And ye jo unusual workplace benefit hai, it sparked debate online. Kuch log praise kar rahe hain, yaar kya idea sir ji, and some people are saying ki bhai ye itne paise kahin aur kharch kar lete. What side of the debate are you on? Bhai kuch bhi kaho, alag to hai socha, kuch alag to socha at least for a change. That's what I think. This is The Big Breakfast with me, Sid, right here on Big 106.2, a part of the Funnation Network. Good morning.

0: सैलरी डे ऑब्वियसली अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी हेक्टिक भी। कैश निकालो, बिल्स और एक्सपेंसेस के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए एक्सचेंज सेंटर के चक्कर लगाओ।
1: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? ई एंड मनी यूज करो।
0: क्या सैलरी के लिए?
1: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली ई एंड मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
0: जैसे क्या?
1: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
0: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
1: बिल्कुल, ई एंड मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो ई एंड मनी के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग। एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट। इंश्योरेंस मार्केट .ae.
3: It's game on with Big Ticket.
4: A guaranteed 25 million dirham prize.
3: 5 winners of 1 million dirhams each.
4: Plus weekly draws.
3: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks. I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
11: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: 8:14, 33 degrees Celsius right now. Humidity at 61%, winds blowing at 8 kilometers per hour, highs of 38, lows of 32 degrees.
11: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: एस सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: insuremarket.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating, built in the UAE, trusted across the UAE. insuremarket.ae
3: Think car rentals are expensive? Think again, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
5: Yeah, right. I wish.
4: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
5: And the apartments?
4: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
5: I'm going now.
4: Visit Symbolic Experience.

0: selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
2: Yeah, right. I wish.
1: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
2: And the apartments?
1: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
2: I'm going now.
1: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
3: 5-year future, part of Elite Group Holding. Big traffic.
4: Traffic at E22, and this is going towards Abu Dhabi University. Chalte hain Dubai Sharjah ki aur. You'll find a bit of congestion at the junction of 311 and 44 at JVT. And then, speaking of 44, Alkhed Road, there's an 8-minute delay at Alkuz Industrial ke aaspaas. And chalte hain Sheikh Zayed Road par, heading south, going towards Alkuz from Al Safa. यहाँ पर आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर. 71 का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है राइट आउटसाइड दुबई मॉल. देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन एट 66 एट अल जदाफ हेडिंग नॉर्थ. देन 75 पर गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रेम यू फाइंड अ बिट ऑफ ट्रैफिक. एंड देन द यूजुअल 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा 7 से 8 मिनट की देर.
3: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
5: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.

0: तुरंत द रिवेंज से जहां से गुजरते हैं खान साहब की आवाज. दिस इज बिग 106.2. इट्स टाइम फॉर द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: सो डूम स्क्रोलिंग ऑन YouTube एंड आई केम अक्रॉस दिस सीन व्हिच मतलब इट्स अनकैनी बिकॉज इट्स नॉट इतनी पुरानी फिल्म भी नहीं है कि सारे कॉर्पोरेट रूल जो है हमारे चेंज हो जाए, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग सा नया हटके रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉस एंड हिज एम्प्लॉय आपको सुनने मिलेगा इस सीन में. सो ये सीन सुनाता हूँ और आपको बताना है कि देखो एम्प्लॉय तो सतीश कौशिक है, बट हु इज द एम्प्लॉयर इन दिस सीन. इस सीन में जो बॉस है, बॉस और एम्प्लॉय का एक अमेजिंग फनी डायलॉग है. The employee is Satish Kaushik. You got to listen to this and tell me ke boss ki awaaz kya hai. Isko suniye. And if you know the answer, give me a call 800-1062 par. Satish Kaushik is saying to his boss everything that we hope and wish we could.
2: Agar police waqt pe nahi aayi to?
3: Sir, sher ke shikar mein do hi baatein ho sakti hain. Ya to shikari ke haatho sher mara jata hai, ya sher ke haatho bakra.
2: Main bakra hoon?
3: Nahi sir, maine to ek baat kahi hai.
2: Ja, ye bag de kar unko.
3: Nahi sir, main nahi jaunga.
2: जो नौकरी करनी है कि नहीं करनी है?
3: सर इस्तीफा यहाँ दूँ के ऑफिस में?
2: तू इस्तीफा देगा?
3: नहीं सर, कभी कभार अपना काम खुद भी तो कीजिए.
2: उस दिल कहीं का
3: सर जाइए तो सही.
2: जा रहा हूँ.
0: कितने लोगों को ये कहने का मन करता है यार बॉस से कभी तो काम अपना खुद भी कीजिए. मैं बक रहा हूँ. ये आवाज़ सुन के आप पहचान गए होंगे कि कौन से लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर की ये आवाज़ थी. तो अगर आपको जवाब पता है, गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पर. कॉल करो इस वक्त जीतने के लिए दो ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज़.

0: with Nacho. Let's Nacho right here on Big 106.2. And I don't know about you, but I really miss those 80s, 90s ki David Dhawan, Govinda time pass films.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And it's not just about Govinda, David Dhawan, right? It's about the supporting cast also. Kyunki unka ek alag hi scene chal raha hota tha. I got Annu with me on the phone line. Annu, good morning.
2: गुड मॉर्निंग.
0: कैसी हैं आप? अभी अभी अपनी डॉटर को स्कूल छोड़कर आई हैं. अन्नू देखो कितनी रिलीव्ड साउंड कर रही है. ओह माय गॉड अन्नू, द पिक्चर ऑफ सनशाइन. अब क्या करोगे? मतलब नाउ दैट यू हैव योर मी टाइम, व्हाट डज अन्नू यूजुअली डू?
2: आई लिसन टू रेडियो एंड द हाउसहोल्ड शोज एंड बेसिकली अभी तो पैकिंग चल रही है इंडिया जाने की.
0: ओह इंडिया जा रहे हो? कहाँ से हो इंडिया में?
2: यस यस पुणे.
0: पुणे. सो व्हाट इज द वन फूड आइटम दैट यू रियली मिस इन पुणे?
2: I love vada pav, which you don't get anywhere like it. It's basically from Mumbai, but Pune has even more delicious ones.
0: Are you serious?
2: Yes.
0: Try saying that to somebody who's from Mumbai, yaar. कोथंबीर वड़ा और समथिंग लाइक दैट, देन आई वुड हैव कंप्लीटली गिवन द क्राउन टू यू. तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है. एंड बट बाय द वे, पीपल हु डोंट नो और हैव नॉट बीन टू पुणे और हैव बीन एंड नॉट ट्राइड द फूड आउट देयर, हाउ डू यू नो दैट समथिंग इज ऑथेंटिक पुणे इफ इट हैज अ लॉट ऑफ मिर्ची? ओ माई गॉड द अमाउंट ऑफ मिर्ची दैट यू गाइस हैव यार.
2: हां यस यस यस.
0: कैसे खाते होते हैं मिर्ची? और ऐसा भी नहीं है कि उसको कुछ दही के साथ एडल्ट्रेट करते हो? नहीं
2: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे ही कच्ची.
0: धुएं उड़ जाते हैं भाई, धुएं उड़ जाते हैं. ओह माय गॉड. सो तो मेरे लिए क्या लेकर आओगे जब पुणे जाओगे? तो
2: इट्स फेमस फॉर चितले बकरवड़ी.
0: शूजबेरी बेटा, शूजबेरी फॉर मी. वेरी नाइस. आई स्पेंट क्वाइट लॉट ऑफ टाइम इन पुणे एज वेल, सो आपने सारी वो यादें ताजा कर दी हैं. बट ऑलराइट, सो हाउ मच डू यू मिस द 80s 90s? आर यू बिग गोविंदा डेविड धवन फैन और व्हाट?
2: गोविंदा यस यस डेफिनेटली, एंड डेविड धवन नाउ विद द वरुण धवन मूवी, इट वाज गुड.
0: ओह यू वॉच्ड इट? हां Nice.
2: Yeah, I watched. We are Bollywood buffs.
0: So, yeah. So, काम करते हैं कि फिर से सुनते हैं, because this is like a great moment in a David Dhawan movie, right? जिसमें कि सतीश कौशिक is the employee. I think a boss employee का relationship जो होना चाहिए, ये लोग हमको बता रहे हैं. तो चलो सुनते हैं एक बार फिर से. People who just missed this.
3: अगर पुलिस वक्त पे नहीं आई तो?
4: सर, शेर के शिकार में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शिकारी के हाथों शेर मारा जाता है या शेर के हाथों बकरा.
3: मैं बकरा हूँ?
4: नहीं सर, मैंने तो एक बात कही है.
3: ये बैग देगा उनको?
4: नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा.
3: तुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी है?
4: सर, इस्तीफा यहाँ दूं के ऑफिस में?
3: तू इस्तीफा देगा?
4: नहीं सर, कभी कभार अपना काम खुद भी तो कीजिए.
3: बस तेल कहीं का.
4: सर जाइए तो सही.
0: क्या लाइन है यार, बॉस कभी कभी तो खुद का काम कभी तो खुद करो यार. वाओ यार, मतलब जो अंदर की जो एक मनोकामना होती है ना हर एक एम्प्लॉय की, वो कही है सतीश कौशिक. इट्स नॉट जस्ट अ डायलॉग, इट इज एन इमोशन. तो बताइए, ये जो बॉस थे जो अपना काम कभी भी खुद नहीं करते थे, ये कौन थे? ये
2: द लेजेंडरी कादर खान.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट. कांग्रेचुलेशंस फिल्म बफ फैमिली, दे जस्ट वॉक्ड अवे विद टू ओपन मूवी टिकट्स. गो एंड वॉच द मूवी ऑफ योर चॉइस. आई थिंक वेलकम टू द जंगल इज गोना बी नेक्स्ट फॉर यू. Cocktail 2 is coming out. Cocktail 2.
2: Yes, Cocktail 2. We are looking forward for that.
0: Amazing, amazing. And while we are at it, don't miss the next hour of the show because I'm going to be in conversation with Shahid Kapoor. So that's something that you don't want to miss. Cocktail 2 is coming out tomorrow. And congratulations to Annu. Two open movie tickets aapke hoge in the Big Bollywood quiz. Absolute pleasure talking to you.
2: Thank you so much. Thank you. You made a day.
0: Take care. That is Annu, hamari aaj ki winner. Don't forget, roz subah a chance for you to flex your Bollywood muscle and win two open movie tickets in the Big Bollywood quiz. And जैसे कि मैंने कहा, अगले घंटे में शाहिद कपूर का इंटरव्यू मैं प्ले आउट करने वाला हूं. हियर्स हिज फिल्म दैट्स रिलीजिंग, कॉकटेल 2.

0: The Beat of Bollywood.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
4: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
5: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ncfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
0: द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जेटोर यूएई. ड्राइव योर फ्यूचर. पार्ट ऑफ एलीट ग्रुप होल्डिंग.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: मॉर्निंग 9:20. इट्स 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. ह्यूमिडिटी एट 61%. विंड्स एट 8 किलोमीटर्स पर आवर. हाइज ऑफ 38, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस.
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: It's game on with Big Ticket.
4: A guaranteed 25 million dirham prize.
3: 5 winners of 1 million dirhams each.
4: Plus weekly draws.
3: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
7: Yeah, right. I wish.
6: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
7: And the apartments?
6: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
7: I'm going now.
6: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
8: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
9: Missed your morning buzz?
10: अपने कभी प्यार में ऐसा चीज़ ही एडवाइस दिया है कि बर्फ से दूर रहना, ठंडी चीजों से दूर रहना, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा।
11: हाँ, बस मैं यही बोलती हूँ, गर्म पानी पी लो, थोड़ा वेट कम हो जाएगा।
10: वेर इज योर बेटर हाफ? Is there no chance of him listening to me right now? Because that doesn't seem right, yaar. But aise public mein nahi karni chahiye ye sab baatein, yaar.
11: I know. No, he can't listen.
10: He can't listen. That's why I'm taking that risk. So, kuch jawab mein hota hai vitark of this tark? Ya, what does he say? Or is he one of those people who have aced the art of just listening and not replying?
11: No, he definitely listened the first year of our marriage. Oh. But now, never.
10: No. Ab jawab milta hai aur sood samet milta hai, Bharti ji.
11: Exactly.
10: So, very good, yaar. Matlab, you just one day into this week, kuch lambai weekend mein kuch khud ka khas kiya aapne?
11: Not really. Hmm. Actually, our house help went back to India. So, we were all, all chaos at home.
10: Keh do ki ye jhoot hai.
11: बस यही सच है।
10: ओह माय गॉड।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: It's 9:33 and कहाँ पर आपको traffic का मिलने वाला है? No surprises. 311 E11 bearing south going towards Dubai from Sharjah. सुबह कुछ आधे घंटे की देर दिखा रहा था E11 पर. Now things are a bit better. You'll still find around 15 to 17 minutes का delay. Then there's industrial area in Sharjah, especially industrial area 6 के side पे आपको traffic मिलेगा. University City की सड़क पर भी आपको अभी भी काफी कंजेशन मिलेगा. 611 हेडिंग साउथ बाउंड आफ्टर नस्मा सेंट्रल पार्क टुवर्ड्स अलावीर आल्सो 4-5 मिनट की देर. कमिंग बैक टू 311 हल्का फुल्का ट्रैफिक एट नादुल अमार एंड 44 पर. आज जैसे ही आप सफारी पार्क एरिया से निकलेंगे अलवरका की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक, बिकॉज देयर हैज बीन एन इंसिडेंट रिपोर्टेड आउट देयर, यहां पर 5-7 मिनट का अनयूजुअल ट्रैफिक आपको मिलेगा. इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल इफ इट्स सेफ टू कॉल 800-1062 पर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. This summer, get ready for a big surprise that will make the heat worth it. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Coming soon, only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: It's 9:51 and there is a bit of congestion right outside City Centre Mirzif on 311 heading southbound. ट्रैफिक आपको मिलने वाला है एंड इसकी वजह से D83 पर रिबात स्ट्रीट पर भी ट्रैफिक जमा होना शुरू हो गया एंड दैट इज गोइंग टुवर्ड्स फेस्टिवल सिटी हेडिंग वेस्ट. देयर इज आल्सो बिट ऑफ कंजेशन एट 44, नथिंग मेजर, गोइंग टुवर्ड्स रसल खोर फ्रॉम नादर हमार एंड देन D3 टुवर्ड्स बिजनेस बे. रोज की तरह 2 से 3 मिनट की देर एक्सपेक्ट कीजिए. 611 पर भी 3-4 मिनट की देर गोइंग टुवर्ड्स अलवी हेडिंग साउथ.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 2 in an entertaining game in Dallas.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए, और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए, और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू।
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Hello, hi, good morning to you. Filling in for Zohra for the final day. She comes back tomorrow. This is the Big Mix, Big 106.2 Pay. We're a part of Fun Asia Network. My name is Ujjwal Khanna. And the mix time, which is the 10 till 2 time, is all about giving you a mix of the mixes, the mix of the music, the mix of life. And of course, fashion is what she focuses also. मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा फैशन के बारे में आपको अवगत कराऊं. उसके अलावा व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ कैन यू बी सरप्राइज्ड दिस समर. एवरीथिंग इज कमिंग इन. स्टे लॉक्ड ऑन विद सम पल्सेटिंग म्यूजिक, सम ग्रेट प्लेलिस्ट. एनी सॉन्ग्स दैट यू वुड वांट टू हियर, आई शैल मोस्ट सर्टेनली प्ले इट फॉर यू. द फर्स्ट ट्रैक अप इज बिजुरिया. टेक इट अवे. आपके साथ अंटिल 2. दिस इज द बिग मिक्स, बिग 106.2 पे. वी आर पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर आपने सुना, ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कहीं से भी कि कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, देन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. selfdrive.ae, दे हैव गॉट द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ, व्हिच इज 899 दिरहम्स अ मंथ ओनली. यस, यू हर्ड दैट राइट, 899 दिरहम्स अ मंथ एट दिस प्राइस. पेइंग मोर जस्ट डजंट मेक सेंस. नो ओनरशिप, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नो स्ट्रेस. Just pick your car and drive. Search selfdrive.ae or download the app now. Selfdrive, your car, your price, your way. Moment out at home.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है, कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
5: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
2: मिस्ड योर मॉर्निंग बज़?
6: ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
2: ये सुनो,
7: अपने कभी प्यार में ऐसा चीज एडवाइस दिया है कि बर्फ से दूर रहना, ठंडी चीजों से दूर रहना, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा।
8: हाँ बस मैं यही बोलती हूँ, गर्म पानी पी लो, थोड़ा वेट कम हो जाएगा।
7: Where is your better half? Is there no chance of him listening to me right now? Because that doesn't seem right, yaar. But aise public mein nahi karni chahiye ye sab baatein, yaar.
8: I know. No, he can't listen.
7: He can't listen. That's why I'm taking that risk. To kuch jawab mein hota hai vitark of this tark, ya what does he say? Or is he one of those people who have aced the art of just listening and not replying?
8: No, he definitely listened the first year of our marriage. Oh. But now never.
7: No. Ab jawab milta hai aur sood samet milta hai, Bharti ji.
8: Exactly.
7: So very good, yaar. Matlab you just one day into this this week, kuch lambai weekend mein kuch khud ka khas kiya apne?
8: Not really. Hmm. Actually, our house help went back to India. So we were all, you know, all
7: nahi.
8: Chaos at home.
7: Keh do ki ye jhoot hai.
8: बस यही सच है।
7: ओ माय गॉड।
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: Hello, morning to you. 11:23 on the big clock. Big 106.2 Bay weather update. 35 degrees Celsius. 35 is what Google is telling me. Feels like 41 degrees Celsius. Aapki gaadi ka dashboard pata nahi kitna dikha raha hai. But haan, garam hai mamla. Bahut garam hai. Please protect yourself. And agar aap petrol station pe hote hain and you see lot of people sort of cleaning your cars up, please apne gaadi mein 3-4 sets of laban rakhiye, laban up rakhiye, and please sort of keep distributing it. Just my suggestion to you. I've seen a lot of people doing it. We could also be a part of that. Up next comes in Taras, Sachin Jigar ki composition.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है.
2: Three hearts, one friendship, one unforgettable journey. Madoc Films and Love Films present Cocktail 2. Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna. Directed by Homi Adijania. Releasing on June 19th all across the GCC in a cinema near you. Distributed by Marudhar. Powered by Big 106.2.
3: Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा।
3: ये सुनो,
5: आपने कभी प्यार में ऐसा चीजी एडवाइस दिया है कि बर्फ से दूर रहना, ठंडी चीजों से दूर रहना, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा?
6: हाँ बस मैं यही बोलती हूँ, गर्म पानी पी लो, थोड़ा वेट कम हो जाएगा.
5: Where is your better half? Is there no chance of him listening to me right now? Because that doesn't seem right, yeah. But ऐसे public में नहीं करनी चाहिए ये सब बातें यार.
6: I know. He can't listen.
5: He can't listen. That's why I'm taking that risk. तो कुछ जवाब में होता है वितर्क of this तर्क, या what does he say, or is he one of those people who have aced the art of just listening and not replying?
6: No, he definitely listened the first year of our marriage. Oh. But now never.
5: No. अब जवाब मिलता है और सूद समेत मिलता है भारती जी.
6: Exactly.
5: So very good यार, मतलब you just one day into this week, कुछ लंबे वीकेंड में कुछ खुद का खास किया आपने?
6: Not really. Hmm. Actually, our house help went back to India. So we were all, all cured at home.
5: कह दो कि ये झूठ है.
6: बस यही सच है.
5: ओह माय गॉड.
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग जियो,
3: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट,
2: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2, brought to you by insurancemarket.ae।
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Missed your morning buzz?
2: आपने कभी प्यार में ऐसा चीज़ी एडवाइस दिया है कि बर्फ से दूर रहना, ठंडी चीज़ों से दूर रहना, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा?
3: हाँ, बस मैं यही बोलती हूँ, गर्म पानी पी लो, थोड़ा वेट कम हो जाएगा.
2: Where is your better half? Is there no chance of him listening to me right now? Because that doesn't seem right, yaar. But aise public mein nahi karni chahiye ye sab baatein, yaar.
3: I know. He can't listen. That's
2: he can't
3: one.
2: Listen. That's why I'm taking that risk. To kuch jawab mein hota hai vitark of this tark. Yeah, what does he say? Or is he one of those people who have aced the art of just listening and not replying?
3: No, he definitely listened the first year of our marriage. Oh. But now, never.
2: No. Ab jawab milta hai aur sooj samet milta hai, Bharti ji.
3: Exactly.
2: So, very good, yaar. Matlab, we just one day into this this week. Kuch lambai weekend mein kuch khud ka khas kiya aapne?
3: Not really. Hmm. Actually, our house help went back to India. So, we were all, all cured at home.
2: Keh do ki ye jhoot hai.
3: बस यही सच है.
2: ओह माय गॉड.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: ए जल्दी हटा तेरा खटारा, चल हटा. हां जल्दी हटा.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Good afternoon to you. Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं आप. ट्रैफिक अपडेट वेरी क्विकली जा रहे हैं इस वक्त आप मैदान की तरफ से. ट्रैफिक एकदम ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेशनल पेंस 10 मिनट का डिले है, बट होपफुली वो भी सब सॉर्ट हो जाएगा. अभी कुछ महीनों में नहीं लेकिन साल लगेंगे, लेकिन एक बार हो गया तो उसके बाद आपको पता है नया रोड का अनाउंसमेंट हुआ है बिटवीन दुबई एंड शारजा थ्रू द टनल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स अनफोल्डिंग. 750 मिलियन दिरहम्स का ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है जस्ट एक दिन पहले. कैन नॉट कम एट अ बेटर टाइम देन दिस. ओके, मूविंग बैक अगेन. अगर आप जेबीसी के आसपास हैं, ट्रैफिक ठीक ठाक मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप हैं इस वक्त वर्षा साउथ की तरफ, नो प्रॉब्लम एज सच. अलकुज इंडस्ट्रियल एरिया 3, लिटिल पैची ट्रैफिक देयर. शेख जायद रोड पे अगर आप हैं, देन ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट के आसपास एक दो मिनट का डिले है. रेस्ट एवरीथिंग लुक्स शार्प एंड क्लियर. Any other obstructions that you're seeing, you can text me on 4305, which is 4305. Brand new gana from the film Cocktail 2, releasing this week. The track is Walla. Aapke saath until 2.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: Oh my God, this is original.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.
1: Big 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ फिलिंग इन फॉर ज़ोहरा. दिस इज द बिग मिक्स. इन केस यू आर मिक्स्ड एंड यू नो यू आर लिटिल कंफ्यूज्ड कि भाई कौन सा इंश्योरेंस ले, इंश्योरेंस ड्यू है तो इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए आप वहां पे जाइए. प्लीज कंपेयर द टॉप इंश्योरर्स सो यू सेव अप टू 30% बाय कंपेयरिंग एंड बाइंग द राइट कार इंश्योरेंस एट द राइट प्लेस. कॉल अ व्हाट्सएप 800 Alfred 24/7 व्हिच इज 800 Alfred 24/7 insurancemarket.ae page.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ।
4: क्या करते सादा?
5: आई मीन वर्क एज एन रिस्क ऑडिटर।
4: ओह, रिस्क ऑडिटर।
5: लोकल ग्रुप किया है।
4: क्या होता है ये रिस्क ऑडिटर? किसके रिस्क ऑडिट करते हैं आप? लोगों की जिंदगी के? मुझे नहीं पता यार, मैं पूछ रही हूँ ना पहली बार आपसे कि होता क्या है, क्या रिस्क ऑडिट करते हो?
5: बेसिकली वी ऑब्जर्व द प्रोसेसेस, द एसओपीज, द प्रोसेस नोट्स, लाइक हाउ गुड दे आर, आर देयर एनी लूपहोल्स
4: एंड इफ देयर आर एनी। नेक्स्ट टाइम आई गो ऑन अ डेट आई एम टेकिंग यू साद, यू बी माय रिस्क ऑडिटर प्लीज, सो दैट आई डोंट गेट इनटू एनी मोर रिस्क इन लाइफ। फिलहाल वी विल प्ले द 5 सेकंड रूल। आर यू रेडी?
5: यस, आई एम रेडी।
4: ऑलराइट, क्विकली नेम 3 माधुरी दीक्षित की मूवीज।
5: बेटा, दिल।
4: यह अरे वेरी गुड, मुझे लगा शुरू तो ऐसे किया था एकदम। क्या हो गया आखिरी तक? 3 एडवाइस, इनफैक्ट इन 3 वर्ड्स जो आप देना चाहोगे फेलो हस्बैंड्स को।
5: कीप योर माउथ क्वाइट। आई सेड ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ।
4: या
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक। 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। Traffic update very quickly. आप बताइए सबसे पहले कि कहाँ पे फंसे हुए हैं आप? Please give me all the information on 4305 right now. अगर आप शेख जायद रोड पे हैं तो traffic ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ problem नहीं है। By lanes of business bay, वहाँ पे आपको थोड़ा सा traffic मिलेगा। Alkhuz industrial area 4th के आसपास आपको traffic मिलेगा। अगर आप हैं इस वक्त सफा 2 के आसपास, थोड़ा सा ट्रैफिक वहाँ पे भी है। D86 पे थोड़ा बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा आपको। डाउनटाउन के आसपास अगर आप हैं, देन बुलेवार्ड सेंट्रल के आसपास यू फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक। एग्जीक्यूटिव टावर्स बाय लेन्स में ऑन शेख जायद रोड एज वेल यू फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक देयर एज वेल। फाइनेंशियल सेंटर के आसपास है अपर डक ऑन D71, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जैम मिलने वाला है। Moving on to Sharjah Industrial Area 15, slow moving traffic there as well. Al-Qisais Industrial Area 4th, kya aspas aapko traffic slow moving milega. Any other obstruction, you can text me on 4305, which is 4305.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: Tum apne aap ko bahut pasand karti ho.
8: Bahut. मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
1: थ्री हार्ट्स वन फ्रेंडशिप वन अनफॉरगेटेबल जर्नी। मैडॉक फिल्म्स एंड लव फिल्म्स प्रेजेंट कॉकटेल 2 Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna. Directed by Homi Adijania. Releasing on June 19th all across the GCC in a cinema near you. Distributed by Marudhar. Powered by Big 106.2. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ. ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: From Chani Chowk to China, Big 106.2 पे आपने गाना सुना. What a lovely track it is. Shankar Mahadevan की आवाज. चाहे Chani Chowk हो China का, I'm not sure. China में ये popular होगी dish. शायद कोई देसी restaurant एक आधा वहाँ पे निकल आए तो शायद कुछ हो जाए. हालांकि I've never been to China, so I'm just sort of saying what I've observed on videos. But if you've been to China, let me know if you've got great restaurants which serve this absolutely delicious non-vegetarian main course.
1: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: And it takes hours and hours and hours of preparation and cooking. It requires hours of patience to make this heat, a complex mix of grains, lentil and meat, pounded into a smooth, thick, savory paste, topped with fried onions and lemon to taste. Which is this non-vegetarian classic main course? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. And the correct answer is Haleem. Asta, thank you very much for your answer. Yes, it is Haleem. I'm not a non-vegetarian, so I don't know how does it taste. But मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें जो one pot cook होती हैं और जो बहुत आहिस्ता से बहुत प्यारे ढंग से बहुत सादगी से cook होती हैं तो बहुत tasty लगती हैं. And anyway, it saves so much of your time if you would want to have the protein of the lentils or the carbs of lentils and of course the proteins of the meat. I think this is best. Now talking about Haleem, now I was going through the history of Haleem कि कहाँ से निकला. You know, हमेशा पता होना चाहिए कि ये क्यों खा रहे हैं हम और इसका जो basically DNA है इस चीज़ का वो कहाँ जाता है. So the record books say that Haleem was basically, it was basically from Baghdad, from Iraq. Okay, किताब अल तबीख में लिखा हुआ है, which is the book of dishes, उसमें लिखा हुआ है कि पहली बारी जो original recipe आई थी वो वहीं से आई थी. एंड उसके बाद ये थोड़ी सी अरब वर्ल्ड में वहाँ पर पॉपुलर हुई. और इट कंसिस्ट्स लिटरली ऑफ क्रैक्ड व्हीट, मीट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, घी, all slowly cooked and vigorously pounded into a thick paste. Or basically it was so incredibly dense in protein and carbs. So isko basically one pot meal ki tarah soldiers ko, you know, apne travelers ko, caravans ko, unko basically diya jata tha to sort of you know, combat the harsh desert terrains when they were crossing as nomads. और जहाँ तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सवाल है, ये दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब मुहूर्त वहीं से हुआ था. अरब ट्रेडर्स आए थे, सूफी सेंट्स आए थे, सोल्जर्स आए थे, एंड दे ब्रॉट दिस डिश विद देम, व्हिच वाज कॉल्ड हरीस एट दैट टाइम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट यू बाय सेल्फ ड्राइव. द सॉन्ग इज करेक्ट, द मूड इज करेक्ट, एंड अ लिटिल लो-फाई फील, बट सच अ ग्रेट ट्रैक. क्लोजर और अपना बना ले का ये मिक्स्ड वर्जन आपके लिए अंटिल 5 o'clock. ऑल अबाउट दीज इजी ब्रीजी ट्रैक्स मेरे यानी उज्जवल खन्ना के साथ ऑन द बिग लाइफ.
1: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा ले, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। दिस समर गेट रेडी फॉर अ बिग सरप्राइज दैट विल मेक द हीट वर्थ इट। Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Almyrid, Ras Al Khaimah. Coming soon. Only on Big 106.2. A part of Fun Asia's global media network.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Song of the hour aapne suna, brought to you by Insurance Market. Pratik Kohat ki awaaz. This is The Big Life.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको मौसम बताया, मौसम विभाग के हवाले से, कि देखो इतनी गर्मी है, कुछ ना कुछ तो बढ़िया चाहिए लाइफ में. हाँ, समर वेकेशंस आ रही है, बिग ब्रेक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या करें, हम सबको कुछ ना कुछ करना है. इसलिए बिग 106.2 आप वो सुनो, वो बेस्ट चीज है जो आप करोगे. ओके, क्योंकि ये जो समर है, वी हैव बिग सरप्राइजेस प्लान फॉर यू स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक. Next week, Big 106.2 is giving you the ultimate stake. Big summer surprises, presenting sponsors, Skechers, title sponsors, Papa John's, hospitality partner, Rixos Almerid, Ras Al Khaimah. Get ready to win a family staycation at the stunning Rixos Almerid and Ras Al Khaimah. Perfect to relax, unwind and make memories. You can chill by the pool, feast on some great sumptuous food and beat the heat in style. उसके साथ साथ आपको चांस मिलेगा टू विन डेली प्राइजेस वर्थ 500 dirhams, इंक्लूडिंग मूवी टिकट्स एंड यू नो फूड एंड बेवरेजेस, ऑल दैट इन सिंगल डे, एवरी सिंगल डे. स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 एंड गेट रेडी टू रजिस्टर. बिग समर सरप्राइजेस, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस अलमेरियत, रास अल खैमा, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, लाइक आईव टोल्ड यू, ओनली ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. वी आर अ पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क. क्लिंटन सिरियो, द ट्रैक इज क्या करूं फ्रॉम वेक अप सिड. मेक श्योर दैट यू आर वेकिंग अप फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस अमेजिंग exciting competition jo hum aapke liye leke aayenge from next week onwards. Stick around.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Chill.
3: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Listen to her every day.
4: Mugembo, khush hua.
5: Kya karte sadab?
6: I work as a risk auditor.
5: Risk auditor.
6: Local group, yeah.
5: Kya hota hai ye risk auditor? Kiske risk audit karte hai aap? Logon ki zindagi ke. मुझे नहीं पता यार, मैं पूछ रही हूँ ना पहली बार आपसे कि होता क्या है, क्या रिस्क ऑडिट करते हो?
6: बेसिकली वी ऑब्जर्व द प्रोसेसेस, द एसओपीज, द प्रोसेस नोट्स, लाइक हाउ गुड दे आर देयर एनी लूप होल्स
5: एंड इफ देयर आर एनी। नेक्स्ट टाइम आई गो ऑन अ डेट आई एम टेकिंग यू साद, यू बी माय रिस्क ऑडिटर प्लीज, सो दैट आई डोंट गेट इनटू एनी मोर रिस्क इन लाइफ। फिलहाल वी विल प्ले द 5 सेकंड रूल। आर यू रेडी?
6: यस आई एम रेडी।
5: ऑलराइट, क्विकली नेम तीन माधुरी दीक्षित की मूवीज।
6: बेटा, दिल,
5: yeah, अरे वेरी गुड। मुझे लगा शुरू तो ऐसे किया था एकदम क्या हो गया आखिरी तक। थ्री एडवाइस इन फैक्ट इन थ्री वर्ड्स जो आप देना चाहोगे फेलो हस्बैंड्स को।
6: कीप योर माउथ क्वाइट। आई सेड ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ।
5: या
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक। 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic brought to you by selfdrive.ae।
7: गुड इवनिंग टू यू, बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। अगर आप शारजाह इंडस्ट्रियल एरिया 12 के आसपास हैं, थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। इफ आई स्क्रॉल अप अप अप अलनादा के आसपास आपको मिलेगा ट्रैफिक। अल किसेस इंडस्ट्रियल एरिया 3rd के आसपास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने वाला है। नादा फर्स्ट इज वेल लुक्स लिटिल बिजी राइट नाउ। मूविंग ऑन टू हलाप स्ट्रीट, वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। D97 अमान स्ट्रीट पे आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा। गेटिंग इनसाइड दुबई नाउ, शेख जायद रोड लुक्स फाइन राइट नाउ। E11 पे अगर आप हैं, अल इतियाद स्ट्रीट, वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। D89 अल मक्तूम स्ट्रीट पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा इन पैचेस। अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 1 के आसपास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने वाला है। देन बात करूं मैं इस वक्त DIFC, उसके आसपास भी थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। JVC के आसपास अगर आप आ रहे हैं, अरजान के आसपास ट्रैफिक ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करूं D86, वहाँ पे हल्का स्लो स्लो मूविंग ट्रैफिक है। एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी इन 4305। लतिका झा, द ट्रैक इज गहराइयां, आपके साथ अंटिल 5 o'clock।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2।
8: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल on the big life, only on big 106.2, the beat of Bollywood।

0: Bollywood. Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
1: Yeah, right. I wish.
0: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
1: And the apartments?
0: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
2: I'm going now.
0: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: Well, time to wrap it up.
3: Big 106.2, That's My Song by E-And.
4: From our side, and that's my song se pehle, it is time for Mansi to come in quickly. Social media ban ho gaya hai 15 saal se kam umre ke bachcho ko, matlab abhi nahi hua hai, ek saal lagega takriban band hone mein, at least in the UAE. It's historic.
5: Mujhe no, it's really nice, but I'm just thinking of those parents jinhone apne bachcho ke account banaye hue hain. So is it applicable?
4: So yeah, ye acha sawal hai. Bahut sare sawal hai isme. वो बच्चे जो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, जो डांसर्स हैं, जो सिंगर्स हैं बच्चे, उनका क्या होगा? उसके बाद पेनल्टी किस पे लगेगी? बच्चों पे लगेगी या फिर पेरेंट्स पे लगेगी या फिर उस प्लेटफॉर्म पे लगेगी जिसने बच्चों को ये फ्री वे दिया हुआ है? और वो बच्चे जो बड़े खुराफाती हैं, जो चुपके चुपके से अकाउंट बनाते रहेंगे और पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है.
5: दिस इज एग्जैक्टली लाइक हमारा टीवी बंद था.
4: हाँ,
5: for a certain time कि हम टीवी नहीं देख सकते थे अपने हिसाब से.
4: करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो इट्स हिस्टोरिक मूव. इससे पहले यूके में हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है. अब आई डोंट नो उन्होंने कैसे मॉनिटर किया है इसको, पर होपफुली यू नो वन ईयर इज द टाइम दैट यू नो द यूई गवर्नमेंट इज गिवन टू फिगर आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान. बट 15 से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बैन है. दैट मीन्स मानसी तू भी अब तेरा भी ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट.
5: 15 हुआ मुझे 15 ईयर से ज्यादा हो गए.
4: नहीं तू तो हमेशा 15 प्लस वैट रहेगी ना. 60 की भी हो जाएगी. गणेश हे गणेश साइनिंग आउट एक्चुअली. शी कम्स इन लाइक 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ ऑन द बिग थ्रिल फ्रॉम 5 टू 9. सी यू टुमारो शार्प एट 2 o'clock. कीप फॉलोइंग अस ऑन 106.2 बिग एफएम व्हिच इज 106.2 बिग एफएम.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चॉइस।
1: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
2: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। दिस समर Get ready for a big surprise that will make the heat worth it. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Almyrid, Ras Al Khaimah. Coming soon, only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
3: Score!
4: 25 million dirhams with big ticket.
3: 5-1 million dirham prizes.
4: Plus weekly cash draws.
3: Don't miss your shot.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18+ game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 37 डिग्रीज आउटसाइड, फील्स लाइक 43। आज लो जाएगा अराउंड 33, ह्यूमिडिटी फिलहाल 45% पर।
2: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, you have Big Thrill, keeping you company. I'm Mansi and I have a confession to make. I am officially codependent on my AI. Like, wo mera soulmate ho. I cannot imagine my life without my AI anymore. And aaj hi jab maine news padhi ki social media ban ho gaya, dil ke kisi kone mein dhak dhak hui ki ab email kaun likhega agar kabhi ChatGPT band ho gaya, AI band ho gaya. Matlab, it has crossed the line from a helpful tech tool to absolute manager of my existence. मतलब मैं खुद सोच रही नहीं हूँ अब, चाहे वो इंस्टाग्राम के कैप्शन हो, चाहे ऑफिस की ईमेल हो, खाने में क्या बनेगा, मिल्क का कार्टन एक्सपायर हो रहा है तो मैं इसे यूज़ करूँ नहीं करूँ, ही डिसाइड्स एवरीथिंग. बट मेरा सवाल ये है कि अब ये तो टेक्नोलॉजी है, किसी भी दिन अगर ये गायब हो गई हमारी ज़िंदगी से तो क्या हमारा अपना दिमाग चलना बंद हो चुका है ऑफिशियली? हाउ डिपेंडेंट आर यू ऑन AI, दैट इज चैट GPT और Gemini? डू लेट मी नो. वी आर ऑल्सो प्लेइंग द 5-second रूल, विच इज अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, आप 3 चीज़ें बताते हैं 5 सेकंड के अंदर. यहाँ पे 100% दिमाग चलता है, चैट GPT काम नहीं आएगा. अगर गाड़ी में बैठे बैठे लग रहा है कि लड्डू गेम है, मैं कर लूंगा, तो ट्राई करो 800-1062 पर. While you're at it,

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: This summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind, thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply.
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अल ऐन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ae.
1: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Alright, slow moving traffic. अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, काफी स्लो मूविंग है, मतलब वर्का से मर्डिफ आगे मोहिसना, इट इज गोना टेक यू 40-45 मिनट डिले, एंड फेस्टिवल सिटी अगेन इज पैक्ड एट द मोमेंट, देयर इज हेवी ट्रैफिक नियर गुरूद, प्लस अगर आप डेरा से जा रहे हैं टू शारजा, इट्स द यूजुअल स्लो मूविंग ट्रैफिक। हेवी ट्रैफिक दो अगर आप दुबई गोल सूख फहीदी के आसपास हैं, जुमेरा से उम सुकीम एंड शेख जायद इज वेल, फिलहाल दिखा रहा है 40 मिनट का डिले, इसके अलावा कहीं अटके हैं बताइए 800-1062 पर।
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: गुस्से से बोलेगी, नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलेगी, मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे, जहां न वक्त न तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
0: 106.2, the beat of Bollywood.

0: मिला नहीं, मिला नहीं, और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2
2: Say whoa!

0: Wow.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल. मैं हूँ नैंसी. वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. ऑन द फोन लाइंस आई हैव गॉट कीर्ति. हाय.
3: हाय,
2: हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन.
2: इतनी ऐसी सांसें क्यों ऊपर नीचे हो रही हैं?
3: नहीं,
2: क्या हो रहा है? सीढ़ी वीढ़ी चढ़ रहे हो?
3: नहीं नहीं नहीं,
2: मतलब बता नहीं सकते ऐसा कुछ हो रहा है. कीर्ति, अच्छा शादी हो गई है? सिंगल हो? बॉयफ्रेंड है?
3: शादी हो गई, अभी हुई है 4 महीने.
2: कीर्ति, क्या आप अपने हस्बैंड पे शक करती हैं?
3: नहीं, ऐसे तो नहीं करती, बस थोड़ा बहुत छेड़ लेती हूँ.
2: नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ना, शक करती है, नहीं करती है कीर्ति?
3: नहीं.
2: तो कीर्ति इज ओके कि अगर वो अपने बॉयज नाइट आउट पे ही गोज एंड इफ ही इज इन द बाथरूम विद हिज फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू आर ओके विद ऑल ऑफ दैट?
3: यस.
2: विल यू बी द सेम आफ्टर 4 इयर्स? हर औरत शक नहीं करती है जब तक आप मौका नहीं देंगे, कुछ ऐसा करेंगे नहीं. हम क्यों शक करेंगे? वी हैव अदर थिंग्स टू डू, राइट?
3: यस.
2: चलो कीर्ति, विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड. आई एम गोना गिव यू कैटेगरीज, 3 चीजें 5 सेकंड के अंदर.
1: 5 सेकंड रूल.
4: ओह यस.
2: क्विकली नेम 3 थिंग्स दैट यू विल पुट इन योर इंस्टेंट नूडल्स.
3: मसाला, वो नूडल्स, वाटर, मसाला.
2: 3 शाहरुख खान की मूवीज.
3: कल हो ना हो
2: और
3: कुछ कुछ होता है.
2: टाइम भी खत्म होता है. टाइम भी खत्म होता है. 3 निकनेम्स जो आपके हस्बैंड ने आपको दिए हैं. नई नई शादी है.
3: कुकी
2: कुकी.
3: फटाफट.
2: You forgot also. Very nice. Forgot or shy?
3: शर्म आ
2: रही. हाय हाय हाय हाय. 3 ऐसी चीजें जो शादी के बाद बदल गई कीर्ति.
3: मैं थोड़ी सी मैच्योर हो गई और हाँ, और अब पेरेंट्स से लड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी. और बहन भाइयों को भी बहुत अब थोड़ी इम्पोर्टेंस ज्यादा.
2: अरेंज मैरिज है आपकी?
3: यस.
2: हाँ, तभी अभी शक नहीं कर रही है. असली रंग 1 साल बाद दिखाएगी. 3 एक्सक्यूजेस जो आप देती हैं अपनी मदर इन लॉ से बात ना करने के लिए.
3: मैं नीचे जा रही हूँ वॉक करने. मूवी देख रही हूँ, वेब सीरीज देख रही हूँ.
2: टाइम खत्म हो गया. फटाफट खेलने वाला गेम है ये. 3 ऐसे रीजंस जो आपको मजबूर कर देंगे आपके हस्बैंड पे शक करने को.
3: वो बहुत ज्यादा अगर फोन पे बात करेंगे तो,
2: और
3: या झूठ बोलेंगे कभी तो.
2: झूठ दुनिया का हर हर हस्बैंड बोलता है, उसके लिए तैयारी कर लो.
1: 5 सेकंड रूल.
4: ओह यस.
2: बहुत ही खराब खेला कीर्ति, बट यू आर सो क्यूट. आर यू न्यू टू यूएई?
3: यस.
2: कितने महीने, कितने साल हुए? 4 महीने हुए?
3: नहीं, मुझे यूएई आए हुए तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए.
2: कहाँ से आए हो इंडिया में?
3: राजस्थान.
2: राजस्थान से. आई जस्ट न्यू द वे यू आर स्पीकिंग ना, कि हाँ इन्हें अभी हवा नहीं लगी है यहाँ की. कीर्ति, वेलकम टू यूएई. आई वाज जस्ट किडिंग. विशिंग यू एंड योर हस्बैंड अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
3: थैंक यू,
2: बाय. या 5 सेकंड रूल अगर आपने खेलना है तो एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: जी, ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ही, तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2. The Beat.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill. We're playing the 5-second rule and joining us, bhai, international call lagai hai. Kaise hai Mr. Dhiru Ahuja?
2: Ekdam badhiya, madam. Bataiye, ma'am.
1: I don't even need to ask how's your work going. If somebody can make an international call, matlab acha hi chal raha hai. ऐसे ही चले टच वुड।
2: कैसा है ना कि हम अभी स्टूडेंट भी हैं, जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड माय एलएलबी एग्जाम्स।
1: ओह वेरी नाइस।
2: गोइंग नाउ बैक होम ऑन द वे विद अवर कलीग जिग्नेश भाई हु आस्क्ड मी टू टॉक यू एंड लेट play the game with
1: very
2: you
1: nice LLB lawyer
2: for me this is something new
1: lawyer se to main nahi jeet paungi kyunki aap log bade hazir jawab hote
2: hain but to abhi just recently study kare hain to hame bhi pata nahi aage kaise jayengi cheeze but we are excited to have new ventures
1: of course and all the very best for that but lawyers I think will crack this game filhal the game is very simple you get 5 seconds I'm going to give you a few categories teen cheeze aapne batani hai 5 second ke andar dekho sir aap utni hi baat कर रही हूँ जितनी मैं कर रही हूँ तो आप ये गेम अच्छे से खेल लोगे क्विकली नेम थ्री बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम वी से शुरू होता है विकी कौशल विनोद खन्ना वाणी कपूर विवेक ओबेरॉय बहुत सारे हैं मूविंग ऑन थ्री थिंग्स दैट आर मेड आउट ऑफ मिल्क एंड शुगर
2: ओके पनीर
1: इतनी देर में तो सामने वाला जो है वो केस जीत के निकल जाएगा आपको फटाफट खेलना है थ्री थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट एन एयरपोर्ट
2: ओनली एट एन एयरपोर्ट लाउंज फूड एंड एयरपोर्ट
1: एयरक्राफ्ट अच्छा तीन चीजें जो आप अपने दोस्त जिग्नेश के बारे में बदलना चाहते हैं
2: अरे बिल्कुल कुछ नहीं बदलना चाहता ये जैसा है बड़ा अच्छा है
1: तीन रेड फ्लैग्स आपके लिए इन अ रिलेशनशिप
2: इग्नोरिंग चीटिंग एंड ओवर कमिटमेंट
1: इनमें से क्या हुआ है आपके साथ तीनों
2: नथिंग हैपेंड
1: मुझे लगा तीनों बोलेंगे अच्छा तीन ऐसी चीजें जो आप के बिस्तर के नीचे मिलेंगी क्राइम पेट्रोल टाइम खत्म हो गया फटाफट खेलने वाला गेम है आप धीरू जी जो आप धीरज से ही खेल रहे हैं फटाफट खेलने वाला है
0: 5 second रोल
1: तो इतना आसान है नहीं जितना आपको लग रहा था बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट
2: हम भी इसी ट्रैफिक में चल रहे हैं बट वो सिर्फ मुंबई में है जिसमें हम चल रहे हैं
1: मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं मेरे रिश्तेदारों ने 11 साल हो गए हैं आज तक एक कॉल नहीं किया है मुझे वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं जबकि उनको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे चलता नहीं है आपने कॉल किया बड़ा अच्छा लगा यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच
2: थैंक यू विश यू द सेम बाय
1: या 5 second रूल एंड ऑल द वे मुंबई से कॉल आया था अगर आपने करना है यूएई से तो एब्सोल्युटली फ्री है 800-1062 पर

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi, and we're playing the 5-second rule. Mazedar game hai aap jab traffic mein phase hote hain. Isse acha time pass hai hi nahi. Aapko milenge 5 second. Main aapko deti hu kuch categories. Teen cheeze batani hoti hai 5 second ke andar. Also, Asha, mera sawal ye hai ki aapki zindagi chat GPT pe kitni dependent hai? Kya aap apne chote se chote aur bade se bade decision चैट जीपीटी की हेल्प से लेते हैं या फिर यू लाइक नहीं नहीं मेरे पास दिमाग है आई यूज माई ब्रेन्स आई एम नॉट लाइक यू मानसी लेट मी नो 801-0062 पर किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: 20,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuresMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. Yeah, Big Thrill of Mansi. We're playing the 5-second rule and we've got Mr. Sher Afghan. Kitna powerful naam hai aapka. Matlab naam se yada jo hai terror. Khauf mein banda chala jaye.
3: Thank you so much.
2: So what do you do, Mr. Sher Afghan?
3: I'm a businessman.
2: Very nice. Kis cheez ka business?
3: Company formation, setup, and tech.
2: Oh, nice, nice, very nice.
3: Well, so far, good.
2: आप जरा नेटवर्क में आ जाओ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर.
3: हाँ, नेटवर्क में ही है. ड्राइव कर रहे हैं इसकी वजह से.
2: हाँ, इसलिए क्लियर नहीं आ रही है. कहाँ ड्राइव कर रहे हैं?
3: टुवर्ड्स शारजा.
2: सो एवरी डे आप दुबई से शारजा जाते हैं?
3: नहीं, मैं जब काम होता है तब यहाँ पे ऑफिस आता हूँ, अदरवाइज मेरी टीम टेक केयर करती है.
2: ये देखो, ये फायदा है खुद का बिजनेस होने का. जब काम होता है तो ये आता हूँ, वरना तो बस टीम देख लेती है. मैं बस प्रॉफिट गिनता हूँ और पैसे कमाता हूँ. टच वुड ऐसा ही रहे. फिलहाल मैं आज शाम को बात कर रही थी कि मेरी जिंदगी ना चैट जीपीटी पे बहुत डिपेंडेंट है. आप यूज करते हैं चैट जीपीटी?
3: मैं ओकेशनली यूज कर लेते हैं, कभी बहुत क्रिटिकल ऑफिशियल ईमेल हो तो फिर कर लेते हैं, अदरवाइज.
2: तो आप चैट जीपीटी से नहीं पूछते हैं कि मैं आज रात को खाने में क्या खाऊं?
3: खाने में क्या खाना वो तो बेगम डिसाइड करती है.
2: ओहो, तो ठीक है. मतलब वो ही है आपकी चैट जीपीटी.
3: सिंगल लोगों के लिए चैट जीपीटी अच्छी है और अदर प्लेटफॉर्म है.
2: सबसे सबसे वियर्ड क्वेश्चन आपने क्या पूछा आज तक चैट जीपीटी से?
3: अपने पिक्चर से एडिट करते हैं.
2: जरा मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो चैट जीपीटी लगे रिश्तेदारों को कि मैं कितना कमा रहा हूँ और कितना घूम रहा हूँ. फिलहाल विल प्ले द 5-second रूल. मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
3: ओके,
1: 5-second रूल.
4: ओह यस.
2: 3 मसाले, 3 spices इन द किचन. नॉट बैड. 3 things दैट यू पुट इन योर चाय. अरे,
3: डिफिकल्ट
2: टू आंसर. व्हाई यू डोंट मेक टी?
3: द टी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर मी देन.
2: ओहो, इसे कहते हैं टशन. टी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर मी. 3 आइसक्रीम फ्लेवर्स व्हिच आर नॉट स्ट्रॉबेरी और वनीला.
3: चॉकलेट
2: और
3: मैंगो.
2: रे शेर साहब, फटाफट खेलना है, बहुत हॉली हॉली खेल रहे हो. 3 मूवी टाइटल्स जिनमें दिल आता है.
3: दिलवाले दुल्हनिया
2: ले जाएंगे. टाइम खत्म.
1: 5-second रूल.
4: ओह यस.
2: आई थिंक आपका ध्यान ड्राइविंग में है इसलिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है. बट आपको मजा आया कि नहीं आया?
3: 5 सेकंड बहुत कम दिया आपने. बस
2: बोलो तो मैं आपको 1 घंटा दे देती हूँ, पर इतना वक्त ना आपके पास ना मेरे पास है. तो 5 सेकंड से काम चलाना पड़ेगा. बट लवली टॉकिंग टू यू. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इसे कहते हैं 5-second रूल. और एक लौता रूल खेलने का है कि 5 सेकंड में जवाब देना है, कॉल करना है 800-1062 पर.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money use करो।
1: क्या? सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2, brought to you by insurancemarket.ae.
4: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
5: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: Missed your morning buzz?
8: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो,
9: अपने कभी प्यार में ऐसा चीजी एडवाइस दिया है कि बर्फ से दूर रहना, ठंडी चीजों से दूर रहना, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा।
10: हाँ, बस मैं यही बोलती हूँ, गर्म पानी पी लो, थोड़ा वेट कम हो जाएगा।
9: ओए, ओए, ओए, ओए। Where is your better half? Is there no chance of him listening to me right now? Because that doesn't seem right, yaar. But aise public mein nahi karni chahiye ye sab baatein, yaar.
10: अब
9: जवाब मिलता है और सूझ समेत मिलता है भारती जी.
10: Exactly.
9: So very good, यार. मतलब ये just one day into this this week, कुछ लंबे वीकेंड में कुछ खुद का खास किया आपने?
10: Not really. Actually, house help went back to India, so we were all, you know, all chaos at home.
9: कह दो कि ये झूठ है.
10: बस यही सच है.
9: Oh my God.
0: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
13: Good evening. It is 37 degrees outside. Low jaane wala hai around 33. Feels like 42. Humidity filhal kam hai 48% par.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
14: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
15: उठी बाबा।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You know, घर में अगर आपके कजिन्स हो या आपका सिबलिंग आपसे ज्यादा मार्क्स ले आए, हमेशा टॉप करे, तो कितना प्रेशर आ जाता है ना आप पे। वैसा ही प्रेशर आई थिंक बॉलीवुड पे आ चुका है आफ्टर आदित्य धर्ष धुरंधर, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ ताड़ दिए हैं। बट आई थिंक 2026 सो फार हैज बीन अ फैंटास्टिक ईयर व्हेन आई टॉक अबाउट बॉलीवुड। लॉट ऑफ डिफरेंट मूवीज, लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनर्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। आई एम वेरी थ्रिल्ड फॉर कॉकटेल 2 जो रिलीज होने वाली है कल। एंड हमने बात करी कृति सैनन, शाहिद and Rashmika Singh, and you'll get to see everything on our Instagram page 106.2 Big FM. It is Filal talking about business. If you're planning to start one, then this is it. Get in touch with Ajman Free Zone Authority. They've introduced the one click business license. Great news for all those jo apna small ya medium sized enterprise shuru karna chahte hain. It's very very easy now. Get in touch with them, and to get your business license, all you need is a business idea. That's it. Baki Ajman Free Zone Authority will take care of the rest, including your visa and your bank requirements, with a fee starting from 5,555 dirhams. Ajman Free Zone is UAE's top destination for SMEs to launch their businesses. So, bahut hi quick, completely digitized hai pura process. TNCs do apply. To get your one-click license, any other information that you need, aaj hi visit kijiye afz.ae.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMIs starting from 966 dirhams. T&Cs apply.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Score!
4: 25 million dirhams with big ticket.
3: 5-1 million dirham prizes.
4: Plus weekly cash draws.
3: Don't miss your shot.
4: Buy now at bigticket.ie.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. T&Cs apply.
6: Insurancemarket.ie. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
8: वेरी वेरी स्लो मूविंग एट द मोमेंट. अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, मर्व टू मुहेसना पैक्ड है, फेस्टिवल सिटी अगेन, आपको ट्रैफिक मिलेगा. फिलहाल एक घंटे का डिले है अगर आप मर्व से मुहेसना जा रहे हैं. देयर इज आल्सो 40 मिनट डिले ऑन शेख जायद दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट. दिस ट्रैफिक नियर सतवा फहीदी. हैवी ट्रैफिक इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी. एंड देयर इज स्लो मूविंग ट्रैफिक अगर आप जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
10: क्यों री? तेरे बाप का माल है?
11: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill, Mansi, and of course, Big in Room Rotting. This is something that Gen Z's are proudly doing. Ab room rotting kya hai? If you don't know what this word is, I'll give you all details. साफ सिंपल शब्दों में ये है कि आप जा रहे हैं किसी और कंट्री को विजिट करने एंड आप सिर्फ होटल रूम में बैठे हुए हैं, सीलिंग को देख रहे हैं, यू डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग एंड जस्ट स्टेइंग इनसाइड द रूम, व्हिच इज सो अनलाइक अ मिलेनियल, बिकॉज हमें लगता है कि अगर हमने किसी कंट्री को विजिट करने का सोचा है, इफ यू स्पेंडिंग मनी टू गो टू अ डिफरेंट लोकेशन ऑल टुगेदर, व्हाई वुड वी स्टे इन द होटल रूम? दैट्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी लाइक टू स्पेंड इन अ होटल रूम, बिकॉज वी थिंक कि अगर कहीं आए हैं तो हम 300 दिन की अट्रैक्शंस जो है वो देख ले. दिस इज अ वेरी मिलेनियल थिंग, बट जेन ज़ीज़ आर इनटू रूम रॉटिंग. मैं आपको बताती हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है. बट उसी के साथ आज का दिन बहुत खास है. इट इज़ द 18th ऑफ जून और आज ही के दिन एक बहुत कमाल मूवी रिलीज हुई थी कुछ साल पहले, जिसका ये डायलॉग,
2: हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस,
1: बहुत ज्यादा वायरल हुआ था. मूवी चली नहीं थी बट ये डायलॉग सालों तक मीम्स में चला था. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस मूवी, कि आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. 800-1062 इज द नंबर टू डायल. मुझे देखना है कितने लोगों ने मेरी तरह ये मूवी सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि कितनी क्रिंज हो सकती है देखी थी. 800-1062 इज द नंबर टू डायल. व्हाइल यू आर एट इट, अरिजीत सिंह की आवाज़.

0: Discover the Freedom plan that suits you best. Freedom. Your choice. Your rules. Visit eand.ae to learn more. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस से मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill with Mansi. 5 days में पूरा यूरोप घूमने वाले मिलेनियल्स के लिए Gen Z नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कॉल रूम रॉटिंग. अब जब ये वेकेशन पे जाते हैं तो ये कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं होटल के. मतलब कमरे में बैठे रहेंगे, सीलिंग को देखते रहेंगे, पंखे को देखते रहेंगे, खिड़की से बाहर देखते रहेंगे, बट ये बाहर नहीं निकलेंगे. They will spend their time just rotting in that room. As a millennial, I don't think so we can do what Gen Z's are doing, because हमारे लिए वेकेशन मतलब कि जब तक पैर में छाले ना पड़ जाए हम घूमेंगे. What do you think about this concept of room rotting? Are you someone who goes on a vacation to stay inside a hotel room, or you want a packed itinerary? 800-1062 is the number to dial. Kickstarting this hour with

0: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
3: थ्री हार्ट्स वन फ्रेंडशिप वन अनफॉरगेटेबल जर्नी। मैडॉक फिल्म्स एंड लव फिल्म्स प्रेजेंट कॉकटेल 2 स्टारिंग शाहिब कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदना, डायरेक्टेड बाय होमी अधिजानिया। रिलीजिंग ऑन जून 19th ऑल अक्रॉस द GCC इन अ सिनेमा नियर यू। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मरुधर, पावर्ड बाय बिग 106.2।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae
4: insurersmarket.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. insurancemarket.ae.
5: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: This summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind, thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetor UAE. Part of Elite Group Holding. TNCs apply.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: एंड बाहर का तापमान अभी भी काफी गर्म है, इट इज 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 56% पर।
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, this is the Big Thrill, Mansi, and we're talking about room rotting, which is a new concept in the Gen Z life, wherein they go on a vacation, they go to a new destination, and instead of itinerary ke piche bhagna, ye bhi dekhna hai, wo bhi dekhna hai, wo sirf kamre mein rehte hain and ceiling dekhte rehte hain. They do nothing. And right now, I've got Shahbaz with me. Hi, Shahbaz. Good evening.
3: Yeah, hi. Good evening. How are you?
2: Mansi naam hai mera. Bhool gaye the. Main yaad dila deti hu.
3: Mujhe pata hai. Mujhe pata hai. Tumhari awaaz mujhe.
2: Filhal, Shahbaz, mujhe ek baat batao. Aap millennial ho ya Gen Z?
3: Main millennial.
2: तो आप जब किसी कंट्री को विजिट करने जाते हैं, हॉलिडे पे जाते हैं, क्या आप सिर्फ होटल रूम में रहने के लिए जाते हैं या फिर आप हम मिलेनियल्स की तरह है कि नहीं हम तीन दिन के लिए आए हैं बट हम 300 जगह देखेंगे, ये भी देखना है, वो भी देखना है, ब्रेकफास्ट भी मिस नहीं करना है, आप होटल रूम में बस बैठे नहीं रहेंगे, यू विल गो एंड एक्सप्लोर अदर प्लेसेस, राइट?
3: यस, करेक्ट.
2: तो Gen Z's एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कॉल्ड रूम रॉटिंग, जिसमें ये जाते हैं वेकेशन पे बट कमरे में ही रहते हैं. एज ए मिलेनियल इसके बारे में आपको कैसे पता?
3: Because I have a daughter also, but she's not Gen Z actually, but she is
2: Gen Alpha.
3: She's not Gen Z actually, yeah. Yeah, Alphys, yeah, yeah, she is falling in Alpha category.
2: तो ये जब same, आपके same. साथ वेकेशन पे जाती हैं कमरे में ही रहती हैं?
3: हाँ, इंडिया जाती तो भी वहाँ पे घर पे रहती
2: है. एज ए मिलेनियल आपको क्या लगता है, जब आप इतना हार्ड अर्न्ड पैसा खर्च करके लेकर जाते हैं और वो सिर्फ कमरे में बैठी रहती है, तो कैसा लगता है आपको?
3: I am taking her, I mean, forcefully out. चलो बाहर चलो घूमने चलेंगे, फिर बाहर लेके जाता हूँ, दिल से नहीं जाती है मतलब. Just like for the namesake.
2: But as millennials, हम ये कभी नहीं कर सकते हैं.
3: Yeah, yeah, of course. How dare you?
2: I know, right? मतलब if we're spending money to visit a country, हम ऐसे लोग हैं जो 5 दिन में पूरा यूरोप घुमाते हैं. ये देसी मिलेनियल है. चलते जाएंगे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, बट हम कमरे में जाके आराम नहीं करेंगे, हम आके घर पे आराम करेंगे.
3: इंडिया वापस यूएई आके आराम.
2: हाँ, ये ब्रेकफास्ट पे जाते हैं क्या आपके जेन अल्फा बच्चे? क्योंकि मेरा तो एकदम यहाँ पे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा अगर वो होटल का फ्री बुफे ब्रेकफास्ट छोड़ देती है तो.
3: नहीं, वो छोड़ती नहीं है, बट हाँ वो चीज अटेंड कर लूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह फ्री वाला सब अटेंड कर लूँ.
2: चलो, एटलीस्ट कहीं तो पापा का पैसा वसूल हो रहा है, वरना मुझे नहीं पता ये कौन से अमीर लोग होते हैं जो फ्री बुफे ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं. बट थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
3: थैंक यू. थैंक यू.
2: बाय. Well, this is what we're discussing, room rotting. Are you a person who goes on a vacation? I'm talking to millennials. And would you just sit in the room or would you wasulo all the paisa off the destination? What do you think about this concept of room rotting? 800-106-2 is the number to dial.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: इतने कमाल रिव्यूज आ रहे हैं इस मूवी के, फिर भी थिएटर खाली है. पीपल आर सेइंग गो वॉच दिस मूवी व्हाइल इट्स इन द थिएटर, क्योंकि 5 साल बाद हम बोलेंगे कल्ट क्लासिक है. लोग कह रहे हैं इम्तियाज अली का बेस्ट काम है. पीपल आर सेइंग इट्स इवन बेटर देन रॉकस्टार एंड तमाशा. एंड आई एम सो सैड कि मैंने अभी तक ये मूवी थिएटर में जाके देखी नहीं है. फिलहाल एक ऐसी मूवी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज ही के दिन 2018 में रिलीज हुई थी. मुझे लगा मैं इकलौती तो हो नहीं सकती हूँ जो क्रिंज मूवीज और क्रिंज कंटेंट एंजॉय करे, तो मैंने आपसे भी पूछ लिया. आपको याद है बड़ा फेमस हुआ था इस मूवी का एक डायलॉग जो लिटरली मीम बन गया था कि आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. 1, 2, 3, go. अगर आप भी फेलो क्रिंज कंटेंट एडमायरर हैं तो मुझे बताइए मूवी का नाम क्या था. 800-1062 पर ये गाने कमिंग अप.
0: बिग 106.2.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: big thrill with Nancy on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi. मुझे यकीन था कि मैं इकलौती हो ही नहीं सकती हूँ. कई ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो सिर्फ क्रिंज के लिए कंटेंट देखते हैं एंड उसमें भी अपना अलग मजा है यार. एंड ऐसी ही ये मूवी थी. आई स्टिल लव दैट डायलॉग. आई थिंक ये रिश्तेदारों पे एप्लीकेबल होता है कि आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. राइट नाउ गॉट शंकर. हाय, गुड इवनिंग.
2: हेलो, गुड इवनिंग मानसी.
1: हाउ आर यू?
2: गुड गुड, वेरी गुड. यू?
1: मैं ठीक हूँ. मुझे लग रहा है कि आप मेरे बिछड़े हुए भाई हैं. आपका एल्गोरिथम भी उतना ही खराब होगा जितना मेरा है, क्योंकि आपने ये मूवी देखी है. देखते हो ना क्रिंज कंटेंट, एंजॉय करते हो?
2: वेरी क्रिंज कंटेंट, इंक्लूडिंग दोस कैट वाला मीम्स.
1: आई लव इट भाई. मैं तो आलू प्याज की शादियां, गुलाब जामुन और रसगुल्ले पे चीट कर दिया. आई एम टेलिंग यू, यू माय लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर. वी वॉच द सेम कंटेंट. आई लव इट, आई लव इट. फिलहाल जिस मूवी का हमने जिक्र छेड़ा है, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी कुछ सालों पहले इन द ईयर 2018, मूवी का नाम क्या था?
2: The one and only Race 3.
1: Absolutely correct. Our business is our business, none of your business, and we're also fan of Bhaijaan. तो वो जो भी करते हैं is our business. I am for sure.
2: भाईजान के लिए करना पड़ेगा.
1: भाईजान के लिए तो बस क्रिंज भी मंजूर है. बट क्या कमाल मूवी थी. मतलब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था एंड बहुत जो है बुराई की थी, बट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी यार. गाना भी अच्छा था. हीरी ये कौन सा गाना था? एक था ना,
2: हाँ हीरी ये था. उसके बाद बहुत सारे गाने थे.
1: हीरी ने ने ने ने ने ने ने ने. देखो हमें याद भी है. एंड ये डायलॉग यार शंकर कितना कमाल था.
2: Indeed, it was a great dialogue. Your business is none of my business.
1: Yeah, us liking Race 3 is none of your business. But I want to ask, मैंने फिर भी ये movie जो है theater में नहीं देखी थी. क्या आप पैसे खर्च करके देखने गए थे?
2: Can you believe it? दो बार देख के आया हूँ.
1: Oh, ऐसा क्या दिख गया था जो दो बार देखनी थी आपको?
2: देखो एक बार तो इतना बड़ा, जो मेरे दोस्त के लिए जो इतना बड़ा फैन है भाई का.
1: हाँ.
2: और वो आने से पहले मैं मदर हूँ, हेट सलमान खान. Suddenly got an invite from our community for a free screening.
1: Free na? तो ठीक है.
2: हाँ, exactly. तो free के लिए कुछ भी कर लेंगे. सलमान भी देख लेंगे दोबारा. तो कोई चौकी नहीं छोड़ा, आना पड़ेगा तो दो बार देखना पड़ेगा.
1: देसी मम्मियों पे you can't debate. Free stuff is their hak. वो आधा सामान फ्री की चीजें देख के ले लेती हैं. अरे ये तेल के साथ ये साबुन फ्री मिल रहा है, चाहे उन्हें सिर्फ साबुन चाहिए था पर वो तेल खरीद लेंगी. So that's a great marketing move. बट यार मुझे तो ठीक लगी थी. मैं मतलब देख सकती हूँ ये मूवी एक और बारी. जस्ट फॉर फन, बॉबी देओल का कमबैक था यार. सलमान खान गिव हिम अ चांस. नॉट बैड.
2: नहीं नहीं, मैं भी देख सकता हूँ. करेक्ट करेक्ट, टाइम पास के लिए तो देख सकता हूँ.
1: हाँ टाइम पास के लिए. यू नो कभी कभार ना मूवीज सिर्फ मूवीज की तरह देखनी चाहिए. हम पता नहीं उसमें क्या मतलब ढूंढने लगते हैं. तो ये है बेमतलब की मूवी एंड हमें देखने में मजा आया, इसलिए मैंने और शंकर ने और शंकर की मम्मी ने तो फ्री के चक्कर में देखी. अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे रेस 3. फिलहाल थैंक यू सो मच शंकर, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. क्या चल रहा है आजकल एल्गोरिथम में नया?
2: अरे रिसेंटली नथिंग, ओनली आई हैवंट सीन द सब्जी मीम्स अ लॉट नाउ.
1: हाँ, सब्जी थोड़े से खत्म हो गए पता है. आजकल वो चल रहा है, गुलाब जामुन ने रसगुल्ले को धोखा दे दिया,
2: छोले ने भटूरे को धोखा दे दिया.
1: हाँ, पता नहीं क्या क्या है. देखो एटलीस्ट उनके पास रिलेशनशिप है, कोई धोखे दे रहा है. हम यहाँ पे सिंगल बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं. चलो बाबा, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय
2: यू एज़ वेल. बाय बाय.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: देख

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: 34 डिग्री स्टिल, लो जाएगा अराउंड 32। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 56% पर।
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time for me now to say goodbye. I'll see you tomorrow. We'll bring in the weekend together. जाने से पहले I will share this theory that I came across yesterday. It's called the fruit theory. जैसे fruits जो आप और मैं खाते हैं उनका seed, उनका बीज कोई और बोता है, उस पर पानी कोई और देता है, कोई उसे डिलीवर कराता है और फिर जाके वो आपके और मेरे पास हमारी प्लेट पे आता है, राइट? सिमिलरली द यूनिवर्स वर्क्स फॉर अस. दिस इज द फ्रूट थ्योरी दैट आई केम अक्रॉस यस्टरडे, व्हिच मींस के व्हाटएवर इज मेंट फॉर यू वो आप तक पहुंच जाएगा. आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे चेस करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई राइट जॉब हो, राइट रिलेशनशिप हो, या फिर प्रॉब्ली दैट ड्रीम कार और द ड्रीम होम दैट यू बिन thinking about. The universe works in your favor. There is someone behind the scenes is sowing the seed right now. Somebody is putting pani to that dream of yours and wo aap tak pahunch hi jayega. So there's no need to worry. Jo aapka hai, just like that fruit jo hamari plate tak aa jata hai, wo aap tak aa hi jayega. And I found this theory beautiful kyunki hum sab na kisi cheez ke piche bhag rahe hain. But agar hum ye soch ke baithe ki jo hamara hai wo hum tak aa jayega, wo bhi utni hi tez bhag raha hai hum tak pahunchne ke liye, bas timing right honi chahiye, to I guess life is going to be easier. हम ओवरथिंक नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ओवरथिंक करती थी. तो ये थ्योरी जब मैंने पढ़ी, और मैं ये काफ़ी टाइम से मानती हूँ कि जो मेरा है वो नो मैटर व्हाट मुझ तक आ ही जाएगा, एंड आई डोंट हैव टू रन बिहाइंड दैट ड्रीम और दैट पर्सन एवरी सिंगल डे. सो ऑन दैट नोट, जस्ट रीड अबाउट द फ्रूट थ्योरी, यू विल टोटली लव इट. फ्रूट थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट दैट्स गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ परसेप्शंस जो आपके दिमाग में है. अब जाते जाते प्यास भी मुझे काफ़ी लग रही है, पानी की जरूरत है. आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना नहीं भूलना है, 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. आई विल सी यू टुमारो, लीविंग यू विद माई फेवरेट गाना दीज डेज, एंड थैंक्स टू आयुष्मान खुराना. जब से उन्होंने अपना वर्जन गाना इसका इंस्टाग्राम पे डाला है, आई फेल इन लव विद दिस सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा. इरशाद कामिल के लिरिक्स हैं, एंड ऑफ कोर्स रहमान साहब का म्यूजिक. सो लीविंग यू विद दिस ब्यूटीफुल वन.

0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
0: थ्री हार्ट्स, वन फ्रेंडशिप, वन अनफॉरगेटेबल जर्नी। मैडॉक फिल्म्स एंड लव फिल्म्स प्रेजेंट कॉकटेल 2, स्टारिंग शाहिब कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदना, डायरेक्टेड बाय होमी अदजानिया, रिलीजिंग ऑन जून 19th ऑल अक्रॉस द GCC इन अ सिनेमा नियर यू, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मरुधर, पावर्ड बाय बिग 106.2। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स वीकडेज 10 AM टू 2 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. नो रश नो नॉइस जस्ट soul soothing music on a moonlit ride. This is the big chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: से पानी मत होश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स weekdays 10 a.m. to 2 p.m. only on Big 106.2 brought to you by insurancemarket.ae Love, Lo-Fi and Night Feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, The Beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 Big 106.2, the beat of Bollywood.

कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा लेकिन मुझसे बात करा कर, पर तेरे

0: beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।